0: डिशवाश रह गया है। लो उना दी रचना हाजिर है कमला शर्मा जी।
1: मेरी आज दी रचना दा नाम है फरियाद। ए खुदा तू सुन फरियाद मेरी, तेनु वास्ता ई रहंदी उमर ता मेरी। बहुत सह लिया हिम्मत जवाब देगी, बहुत सह लिया हिम्मत जवाब देगी। ठल पा ना सकी दरिंदिया ते, नहीं सुन सकदी ना ही पढ़ सकदी, नहीं सुन सकदी ना ही पढ़ सकदी। नित खबरां मैं वादे कहर दियां, हथ खड़े ने हर कानून दे इथे, हथ खड़े ने हर कानून दे इथे। मिलदा दिसदा नहीं इंसाफ कोई, ना ही दिसया ते ना ही दिसन वाला, ना ही दिसया ते ना ही दिसन वाला। रस्ता कोई मासूमा दी आबरू बचान वाला। हर मां अज किमें खौफ विच ए, हर मां अज किमें खौफ विच ए। बाहर जान तो बच्ची नू रोक दिए, किमें पंख कट्टे ओह अपनी लाडली दे, किमें पंख कट्टे ओह अपनी लाडली दे। चित जिस दा उड़न लई लोचदा ए, बिना औरत दे ना वजूद जगदा, बिना औरत दे ना वजूद जगदा। तैनू पता है ए मैं की आखा, दिली खाहश है मेरी ए खुदा, दिली खाहश है मेरी ए खुदा। बदल दे सोच दे दे सद बुद्धि, बदल दे सोच दे दे सद बुद्धि। जो सोच दे ने कुजिया हरकता ले, अते जो कर दे ने जुलम निमानिया ती। नहीं ता नहीं ता तोड़ दे हथ कड दे नैन, तोड़ दे हथ कड दे नैन। जो वद दे ने मासूम बच्चिया ती। अगर ना रुकिया एह घोर अत्याचार, अगर ना रुकिया एह घोर अत्याचार। ता लगदा हर मां एक जिंदा लाश बन के रह जावेगी, ता लगदा हर मां एक जिंदा लाश बन के रह जावेगी। जो बस चिंता दे कुन विच ही मिटदी जावेगी, जो बस चिंता दे कुन विच ही मिटदी जावेगी। शुक्रिया जी।
0: का महफिल दे विच हाजिर हो रहा है नवा शहर तो नवा उम्र दा शायर परमवीर रही, जेड़ा की लिखदा है मैनू मेरी होकिया ना कला रहन दियो। लो परमवीर राही नू जी आया।
2: सत श्री अकाल जी। जी मैं परमवीर राही बसनीक नवा शहर। अज मैं दुआबा रेडियो दे आपदा लिखिया हुआ गीत थोड़े सबना नाल सांझा करन जा रहा हाँ। ते मैं दुआबा रेडियो नाल जुड़े हुए सारे स्रोतियां नाल दिलों धन्नवादी हाँ। ते अपने दादा जी समान श्री हरबंस सिंह जी दा बहुत दिलों धन्नवादी हाँ कि उन्होंने मैनू अज मौका दिता कि मैं अपना कुछ लिखिया इत्थे पेश कर सकां। ते जी गाना कुछ इस तरह है कि जिन्ने सा बाकी मेरे नाम तेरा लैणगे, भुल जायो मैनू बस वार वार कहणगे। मोड़ की है जेड़ा इहो छला रहण दो, कि मैनू मेरे होंकिया ना कला रहण दो। मीचा जदों अखां बस तू कोल होवे, हथ मेरा चंदरी दे मूँह कोल होवे। जांदे जांदे हथे उहदा पला रहण दो, कि मैनू मेरे होंकिया ना कला रहण दो। यार दे सजाए लारियां दे सिवे ते, लिट जांगे यारा हुण हंझू गिरे जे। उहदी बेवफाई वाला हल्ला रहण दो, कि मैनू मेरे होंकिया ना कला रहण दो। सज्जणा लियाई कतलां दी रुत ते, बस गीत लिखे रह गए बगाने पुत दे। दुख जो परम दाया वल्ला रहण दो, कि मैनू मेरे होंकिया ना कला रहण दो, कि मैनू मेरे होंकिया ना कला रहण दो। धन्नवाद जी।
0: ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਸਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
3: ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾਂ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿੜ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਫੁਹਾਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾਂ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ।

मैनू जानी ना तिला बोकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरनावी लबांगे जिस दे विच जा वड़ बैठे मैं।

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

चुन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

का सफर ये सुहाना बने। छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना तो ये जीवन तेरा बस।

0: तो ये जीवन भला है ये किस काम का।
1: जी दी रचना तो बाद हूँ मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर सुखविंदर कौर जी सदा देन जा रहा वो आन अपनी रचना लैके हाजिर हो। सुखविंदर कौर जी इस बार साढ़े कवि दरबार के जो आ रहे ने वह बठिंडा के शायर कुलदीप सिंह मंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे हैं। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
2: ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਿਕ ਦੇ

चन्न सितारे खुशियां केड़े नहीं आहे रास कदे। शीशे अगे खड़के जद भी चेता आया बीतदा बीत पल।